0: काम करें, आप अपने पांच दोस्तों को फोन लगाएं, तीन पक्का एनरोल हो चुके होंगे और दो हमारे से हुए होंगे।
1: क्या बात है जी, जी, जी, जी।
0: तो आप फुली ऑनलाइन कोर्सेज करें, सोखेचे कोर्सेज करें, 30 से 100,000 की फंडिंग हासिल करें, जिसका आज की डेट में 50% पोर्शन नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स है, जो कि 1 अगस्त के बाद फुली लोन होगा।
1: जी जी।
0: और एलिजिबिलिटी पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन, और फैमिली साइज ज्यादा है, ज्यादा फंडिंग, बच्चे ज्यादा है, इनकम कम है जितनी आपकी उतनी ज्यादा फंडिंग, और डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आते हैं वाले।
1: क्या बात है। तो नाल दी नाल जिवें फंडिंग की गल आपां करिए, की सानू कोई सिक्योरिटी या कोलैटरल भी चाहिए उहदे लई?
0: नहीं जी, गवर्नमेंट ने आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट एंड बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं होती इस फंडिंग की, 30 से 100,000 की
1: जी।
0: गवर्नमेंट आपको फंडिंग दे रही है यहाँ पे एजुकेशन के लिए और लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, कहीं भी उस पैसे को आप खर्च कर सकते हैं। आपको बैंक से फंडिंग नहीं ले रहे, आप गवर्नमेंट से ले रहे हैं, सिक्योरिटी फ्री होती है
1: जी,
0: और क्रेडिट चेक भी नहीं होता है इसके अंदर, एज लिमिट भी कुछ नहीं है, 40, 50, 60, 70 साल के, नो इश्यूज एट ऑल। कॉल करें हमें, हमें आप अभी कॉल करें, अपना असेसमेंट कराएं, 30 से 100,000 की फंडिंग हासिल करें, सोखे जे फुली ऑनलाइन कोर्सेज करें, नो एज लिमिट।
1: क्या बात है, जिवें कि गल कीती है सोखे जे ते वाकई सोखे जे ऑनलाइन कोर्स ने, किते जाण दी लोड़ नहीं। जे तुहानूं लगदा है भी सोखे करने हैं या थोड़े जे डिफरेंट भी करने ने, पीएसडब्ल्यू एचवैक दे कोर्सेज ने, ते सोखे कोर्सेज केड़े, मैनेजमेंट वाले कोर्सेज ने?
0: हाँ जी, मैनेजमेंट वाले फुली ऑनलाइन सोखे जे कोर्सेज ने। अगर आपको लाइक एचवैक पीएसडब्ल्यू जैसे कोर्सेज कर रहे हैं, वो भी है, वो भी गवर्नमेंट फंडेड कोर्सेज ही है, गवर्नमेंट फीस पे करती है उनकी, उसमें भी आपको रहने खाने की फंडिंग मिलती है लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, डिपेंडिंग ऑन फैमिली साइज। फैमिली साइज अगर आपका, अगर आपके तीन बच्चे हैं तो आप 200,000 की फंडिंग, जिसमें से 50,000 ग्रांट है, 10-50,000 0% पे लोन है। फैमिली ऑफ अगर आप थ्री हैं, अप टू 60,000 की फंडिंग है
1: जी,
0: जिसमें से 35,000 ग्रांट है और रेस्ट पोर्शन 0% पे ऑप्शनल लोन है
1: जी।
0: तो मतलब कॉल करें हमें अभी, असेसमेंट करें
1: जी। बिल्कुल, कॉल सानू करो 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175 जी जी जी।
2: क्या बात है,
0: फीस काम होने के बाद है जी।
1: हाँ। अच्छा, फीस जी
0: शुरू में नहीं है।
1: हाँ।
0: 199 से $499, नो परसेंटेज, नो कमीशन, नो कैच। अभी बहुत लोग हमारे पास आते हैं जो टफ टाइम से गुजर रहे हैं, प्रॉपर्टी ज्यादा ले ली है उन्होंने, और सिंगल मदर्स आते हैं, ब्लेसिंग देते हैं साथ में हमें।
1: गवर्नमेंट दी ग्रांट भी लो, ते फीस वाला काम नवी भाई मैं हैरान हो गया।
2: हाँ।
1: सीधा अकाउंट दे विच पैसे किदे आंदे, जिहड़े बंदे क्लाइंट होंदे आ तुहाडे अकाउंट दे विच पैसे जाने, तुसीं फिर बाद दे विचों पैसे मिलन तो बाद सारांश होना नूं।
2: सरबजीत यार, पैसे किहड़ा किसे हो, पैसे नाले भेज भी गवर्नमेंट रही है ना। $1,000 फीस देने वेले कोई तकलीफ भी नहीं होंदी। सो सरांश नूं फोन कर लो,
1: बड़े चंगे विचार है, तुसी भी जरूर पहुंचो, सारांश नूं मिलो, आके बैठो, अपनी असैसमेंट दिखाओ भी आ चीज है, आ इनकम है। सारांश जी भी इस टाइम पूरे खुश ने, कि नहीं सारांश जी?
0: हाँ जी, हाँ जी, लाइक अच्छा रहा आपका प्रोग्राम पूरा, एंड देन लाइक हम वी आर वेरी श्योर कि हम और लोगों को हेल्प कर पाएंगे अपनी कम्युनिटी में। हम चाहते हैं हमारी कम्युनिटी में और भी अवेयरनेस हो इस चीज की, बहुत लाइक लोग और भी जो रह गए वो भी इसका लाहा ले, रहना जाए पीछे, उन्हें कॉल करो, फंडिंग हासिल करो, तेज हासिल करो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है।
1: क्या बात है, बड़ी शानदार पंजाबी लाहा तुसी जरूर लो। ते नंबर है 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175 जी। नवी जी,
2: वेरी गुड, क्या बात है। सो थैंक यू सर जी, थोड़ा बहुत बहुत, एंड सरांश होना दा भी बहुत थैंक यू। सो 437-264-3175, बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू। ओके, एंड एक तुसी टैक्स सेल अकाउंटिंग वाले नु याद रखना, थोड़ी कोई स्मॉल बिजनेस है या बिजनेस है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਸੈਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, ਪੇਰੋਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ, HST ਸਪੋਰਟ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਵਿਊ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ। 647-461-0361 ਨੰਬਰ ਹੈ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। 15-20 ਮਿੰਟ ਫ੍ਰੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਓ ਮੁਫਤ। 647-461-0361। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਐਟ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ, 6885 ਟੌਮਕਨ ਰੋਡ, ਸੁਖ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੁਖ ਜੀ ਵੈਲਕਮ।
3: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਵੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 6885 ਟੌਮਕਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। 6685 ਟੌਮਕਨ ਟੌਮਕਨ ਟੌਮਕਨ ਰੋਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਡ ਫੋਮ ਦਾ ਮੈਟਰਸ, ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਡ ਫੋਮ ਦਾ ਮੈਟਰਸ, ਮੈਂਬਰੀ ਫੋਮ ਪਿਲੋ ਟੋਪ ਦੇ ਨਾਲ 500-600 ਡਾਲਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆਇਓ। ਪਹਿਲੇ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਡ ਫੋਮ ਦਾ ਮੈਟਰਸ 199 ਦਾ, 199 ਡਾਲਰ 199 ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੂਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ, ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੀ, ਹਾਰਡ ਫੋਮ ਦਾ ਮੈਟਰਸ ਮੈਂਬਰੀ ਫੋਮ ਪਿਲੋ ਟੋਪ ਦੇ ਨਾਲ 199 ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਹੂਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਓ 6885 ਟੌਮਕਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। 6685 ਟੌਮਕਨ ਰੋਡ, ਡੈਰੀ ਟੌਮਕਨ ਦੀ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਹਾਈਵੇ 410 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 6885 ਟੌਮਕਨ ਰੋਡ, 6685 ਟੌਮਕਨ ਰੋਡ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ।
2: ਫਰਨੀਚਰ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ।

सतगुरु होए दयाल तसरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल नकब हूँ झूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानी है, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणी है। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगा नु मानदे हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम, खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम, रेडियो उड़ान जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला की पहचान, रेडियो उड़ान प्रभ संतु दे नाल। सुनने वाले सारे दोस्तों नूं, मित्रां नूं, भैणां नूं, भरावां नूं, साडे बजुर्गां शहनशाहां नूं, फुल्लां वर्गे चेहरियां ते रब वर्गियां मावां नूं बहुत बहुत प्यार सत्कार आदाब सत श्री अकाल ते नमः।

वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, मां बोली है मावां वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, बाल पुने दे चावां वर्गी ते सजन दियां खुलियां बावां वर्गी, खुलियां डुलियां थावां वर्गी मेरे पिंड नू जांदे रावां वर्गी, आओ इस दी शान वधाइए एदे सोले रल मिलगाइए, क्योंकि बोली अपनी ते सानू माण होना चाहीदा, बंदा जदों बोले तां पछाण होना चाहीदा, अपनी पछाण वाला दीवाना बजा दियो।

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनू ए कहंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नू प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस ते ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: जी तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम, तो अज ही सानू कॉल करो 647-504-15।

0: वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
3: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
4: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: शक्ति के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं बहुत बार कहना ना कि करा बेसमेंट पर चुप रहे हैं, आसमान है, फार्म हाउस खुले जमीन के तलियाँ ला के चौंकड़े मार के बैठे हैं, आज उजी रोटियाँ खा लो, पंजाब वालिया मिट्टी पा लो, जोड़ा हैगा अनएथिकल वे ना कोई भी चीज़ में प्यार करना। मैं याद है मैं काम चला ना भी किसी ने मेरा ऐप चलाई फ्रॉम होम, तो वो मैं कहते मैं अपने मैंने मिलना से मैंने मिलना के नाल उन्होंने ना अपना पैक लिया, तो वो बहुत बड़ा सारा सी जो हफ हफ कर रहा है बहुत बड़ा सा, तो मैं हैरान से उसे घर चुके पैर वैसे उत्तर होना अनसेफ जड़िया चीज़ा ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है जी, तुम उन्होंने कंप्लेट कर सकते हो। तुम किसी भी जगह देते कोई घर के काम करता है कोई कितों भी काम करता, 311 डायल करना है, 311 डायल करके फायर डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट करना होगा कि जी अग का खतरा है, क्योंकि वाकई जो घर अग लग जाती है बहुत हाई एफिशंसी देते गैस में यूज करते हैं, तो टेंपरेचर भी पता लग जाता गैस बहुत ज्यादा या तो लीक है या फिर इलीगल घर के क्यों नहीं लाओ, क्योंकि BTU होंगे जो हीट होंगी वो BTU होंगी है, वो BTU के बेस के उत्ते परमिट लाइसेंस मिलते हैं फूड प्रोफेशन के, तो थोड़ी वो BTU लो होंगी तो उन्होंने बहुत ज्यादा जो यूज कर लो कितना कितने आग लगने का खतरा होंगे, क्योंकि ड्राइवर्स वगैरह जी वो नहीं रखी मतलब जी आग को रोक सके बहुत कुछ होंगे मतलब रोक नहीं सकते। सो जरा लॉ है ये लोगों सुसाइड के लिए पॉइजन भेज दस गया दुनिया भर से 14 मौत जीडिया कैनेडा के लिए प्लस दुनिया भर के जीडिया डैथ हुई ऑस्ट्रेलिया लंदन तो लैके कई कंट्रीज के इंग्लैंड तो लैके, सो इन हम सुनवाई भी दौरान 14 साल की फर्स्ट डिग्री मर्डर के ऊपर गल चल रही थी, तो इन 14 साल की सजा हुई है। दूजे पास मार्क कार्नी ने क्या कि कैनेडा वधिया बना अमेरिका भी ग्रेड बनाई रखना है, एक स्टेटमेंट जी दी है जिसे पर चर्चा चल रही है कि मार्क कार्नी वालों ये स्टेटमेंट इस मौके पर जो असी अमेरिका ना अपनी डील सेटल कर रहे हैं जो सा ट्रेड एग्रीमेंट है तिन्ह मुल्कों आपस नैप्टा के अंदर जोड़ा होंगे कुछ मैं कहते हैं वो साइन होने जून वह महीना है वो सैट होना चाहिए। दूसरे पास टैक्निकल रिसेशन की टर्म डिकलेयर हो चुकी है दो अलग अलग क्वार्टर्स के कैनेडियन इकोनमी नैगेटिव जी है ग्रोथ में फायर कर चुकी हैगी है, तो बहाना है जी आए हैं वो आए हैं टैंका टैंका टैंका टैंका डेंगा डेंगा दो बैंक से प्रॉफिट दस के हुई हैं बैंक राही लोगों के अकाउंटों चो 100 बिलियन प्लस पैसा कर लिया गया। तुम सारे मैंने सुनते पे थोड़े पैसे कितने गए सोच के देखो टैक्निकली टैक्निकली थोड़े सारे के पैसे बैंकों को चले गए। इसे भी कल जी हैगी परसों नैशनल बैंक के PD बैंक ने बिलियनज ऑफ डॉलर के प्रॉफिट जोड़े पाए हैं जिसे कि इनडायरेक्टली ट्रैकिंग तो होटल भी कि बेनीफिट रहे हैं। सो जोड़ा ये सारा पैसा हैगा सरकार के थ्रू गया है, सरकार ने सिर्फ अपने आपको साइड पर रखे हुए हैं कि मैंने नहीं पता मेरा तो ना लगता पहला बहुत कुछ यह जो किया तो लगता। सो बिलियनज ऑफ डॉलर कौन अमीर हो इस टाइम के एको बंदे अमीर हुए हैं बैंक बाकी सारे गरीब हो तो पैसा किन्ने लिया गया उनका 5 रुपये चीज चक्रों जेल सट दें इतने हरेक घर के 3-3 हज़ार डॉलर 2500-2500 रुपया एक्स्ट्रा कट्ठा करना शुरू कर दिता पिछले 3 साल तो एक घर चो 1-1 लाख डॉलर 1.5-1.5 लाख डॉलर कट्ठा कर लिया बड़ा वधिया गेम आ तो हम 1.5-1.5 लाख डॉलर कट्ठा करके हम उन्होंने कह दिता गया कि जी रिसेशन है हूँ जोड़ा समा है जो इंट्रस्ट को थले नहीं सकता मार्क करने मैंने लगता मार्क करने चुनिया गया या ना चुनिया गया एक बराबर है जे यही तो बैंक ऑफ जोड़ा कैनेडा में कि इंट्रस्ट के उत्ते वर्कआउट नहीं कर रही कोई पॉज नहीं लगा बैंकों की इनकम के उत्ते प्रॉफिटेबल कौन ने सैकेंड नंबर पर वॉलमार्ट ने बड़े रैकड ब्रेक प्रॉफिट सबमिट किए हैं जिन्या कॉस्को शॉस्को आज जिन्ने मल्टी बिलियनर लोग ने इन्होंने प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़े थे पिछले 2 साल 3 साल 4 साल हर साल ये प्रॉफिटेबल ने कुछ सारे घट दिए आप रेट का कह देंगे समान बढ़ गया आ ट्रकों बाई को कॉल करके दस दिए 100 खा के जे किसी किराए च मिलता है तेल बदले के पैसे किसी पंजी नहीं मिलती जिड़े बच्चे ब्रोकर ने ना ठेकेदार ने वॉलमार्ट करके ये पैसा कमा दिया वॉलमार्ट ने अपना स्टोर शुरू किया पहला जिसे बच्चे ने कहा कि मैं सब तो सस्ता स्टोर होगा मेरे को आए अब वॉलमार्ट कितने कड़ा है तुम देख सकते बहुत सारे लोगों ने अमेरिका में बाइकआउट भी किए हैं उस स्टोर से बट असं बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो चंगा काम करने वाले हैं उन्होंने ऑटोमेटिकली असं खत्म कर देंगे इन्होंने खत्म करने की लड़ नहीं है इन्होंने की लड़ा खत्म करके असं बैठे ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਦੱਸਣੀ, ਫਰੈਸ਼ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਆਉਂਦੇ।
1: ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਨੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੀਜਨੇਬਲ ਰੱਖੇ ਆ, ਰੀਜਨੇਬਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰੀਜਨੇਬਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਘਿਓ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸਿਰਫ $24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਡੀਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਸਿਰਫ $12 ਦਾ ਬੈਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ $17 ਦਾ ਬੈਗ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ $12 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਡੀਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਬਰ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ 5 ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $34 to $35 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ $24, ਯਾਨੀ ਕਿ $7 ਆਫ ਨੇ ਪਰ 5 ਲੀਟਰ ਦੇ ਯਾਰ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਡੀਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਨੀਰ ਔਰ ਬੇਸਣ ਸਿਰਫ $3.99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, 4 LB ਔਰ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰ ਦਾ ਪੈਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰਾ ਔਰ ਨਾਨਕ ਪਨੀਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੰਗੂਰ ਬੇਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ $3.99 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਸਿਰਫ $12 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਡੀਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਟੇ ਦਾਲਾਂ ਔਰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਡੀਪੂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ, 31 Steeple Rush Avenue ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905-458-1300, 905-458-1300, ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾਸ ਐਂਡ ਸਿਕਸਮ ਦਾ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, 1618 ਡੰਡਾਸ ਸਟ੍ਰੀਟ ਈਸਟ ਬਿਟਵੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 905-556-1651, 905-556-1651। ਲਿਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 40+ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸਟ ਟੂ ਕੋਸਟ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ ਸਟੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ ਔਰ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਹੋਣਗੇ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਡੀਪੂ, ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਡੀਪੂ, ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਡੀਪੂ।
0: ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਿਮਿਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਾਜਾ ਜੀ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 416-720-3642-416-720-3642 ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ।

0: वैरायटी के रोजेस अब आए हैं, उनके उनको अच्छा सा खुशबू है। यहाँ जैसे रोज की खुशबू आती नहीं है, बट जो हमारे पास आए बढ़िया बढ़िया कलर्स है, 6-7 वैरायटीज है। बाकी सारे
1: खुशबू है इसमें?
0: हाँ जी हाँ जी, और वो सारे पेरिनियल्स है, इसका मतलब वो हर साल वापस बार बार आएंगे।
1: मैंने यहाँ का बुड्ढा गार्डन है, बुड्ढा गार्डन बीसी में है,
0: अच्छा
1: कनाडा का सबसे बड़ा बाग है।
0: अच्छा जी
1: हाँ जी, विक्टोरिया जब जाते हैं ना उस तरफ आता है। मैं बुड्ढा गार्डन चला गया, मेरी फोटोज है वहाँ की बहुत अच्छा साल पहले की, मैंने कभी भी जिंदगी में कोई फोटो पोस्ट नहीं की जहां भी जाता हूँ, है ना।
0: हाँ जी,
1: तो वहां पे इतने फूल, मेरे मामा जी मेरे साथ थे, मामा श्री, मैं कहा मामा जी खुशबू आती नहीं, वो कहते कैनेडा में खुशबू नहीं आती फूलों में, आज आपने बोल दिया कि फ्लावर्स में खुशबू होगी।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: और इसके अलावा
0: और हमारे पास सारे वैरायटी के पेरिनियल्स है जो अगेन हर साल आएंगे, उसमें लावेंडर्स है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजीज है, डिफरेंट वैरायटीज के जो ऑर्नामेंटल ग्रासेस होते हैं जो पेरिनियल है, जिनको भी फ्लावर्स भी आते हैं वो पेरिनियल्स को।
1: हाँ जी,
0: वो भी है हमारे पास। रोजेज ऑफ शैरन है, हाइड्रेंजिया की अलग अलग वैरायटीज है, डिफरेंट टाइप्स की लीलीज है, ये सारे जो प्लांट्स है ये हर साल आने वाले प्लांट है।
1: सो मैं एक बार दस मैं एक बार लाने ने हर साल आपे आई जाएंगे। सब तो वड्डी प्रॉब्लम ये होंदी, आपा होम डिपो चल जाना, कितने भी चल जाना, उत्थे आपा देखी जाना, फुलां नूं दसण वाला कोई नहीं हुंदा। ग्रीन वैली गार्डन सेंटर ते ज्योति ते इन्हां दी टीम है जिहड़े एक्सपर्ट ने तुहानूं समझाउण दे लई बूटा किन्ने किन्ने इंच दूर लाउणा, किन्ना धरती दे विच लाउणा, किन्ना इहदे ते रिओ पाउणा, पानी किन्ने टाइम बाद, किन्नी धुप चाहीदी है, ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਦੇ ਵਿਲ ਕੰਸਲਟ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਨਡੋਰ ਆਊਟਡੋਰ ਦੋਨੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ। 1.5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਆ ਨੈਗਰਾਉਂ ਦਾ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ, ਹੋਮ ਡਿਪੂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਬੂਟੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੂਟੇ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਉਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਬੇਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਲਗਾਓਗੇ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੀਆ ਚੱਪਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਗਣ, ਟਮਾਟਰ, ਖੀਰੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਤੋਰੀਆਂ, ਰਾਮ ਤੋਰੀਆਂ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਏਅਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜੋ ਜੋਤੀ ਆਪਕੋ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਕਾ?
0: ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੇ ਲੋਗ ਆ ਰਹੇ, ਲੰਡਨ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸੇ, ਬੈਲਵਿਲ ਸੇ, ਸਭ ਸਭ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ।
1: ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਵੋ ਖੋ ਗਏ ਥੇ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਦੇ ਵਰ ਫਰੋਮ ਵੁੱਡਸਟਾਕ, ਵੋ ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਸੇ ਯਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਥੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ।
0: ਅੱਛਾ ਜੀ,
1: ਰਸਤੇ ਮੇ ਦੇਖ ਲੋ ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਆਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲਾਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲਾਈਏ, ਨਾਲੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕੀਮਤ $2.49 ਤੋਂ ਟ੍ਰੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 2 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ 6472225601-647-222-5601-56-01 ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 905-913-1666। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਲ ਮੋਰ ਔਰ ਬੋਲਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਫੀਲਡ ਐਂਡ ਮਕਵੀਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਜੇ ਮੇਫੀਲਡ ਐਂਡ ਮਕਵੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ, ਲੰਡਨ, ਕਿਚਨਰ, ਵਾਟਲੂ, ਗੋਲਫ, ਮਿਲਟਨ, ਈਵਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੋਲਫ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਮਿਲਟਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋਗੇ। 6472225601-6472225601। ਜੋਤੀ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਫਲਾਵਰਸ ਔਰ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਓ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ?
0: हमारे पास सारी वैरायटीज बास्केट, हैंगिंग बास्केट्स है, ट्रेज है जो तुम वॉल को अटैच कर सकते हो, एनुअल के 4-inch पॉट्स है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है जो तुम खुद के प्लांटर्स भी बना सकते हो, बड़े बड़े प्लांटर्स है हमारे पास जो पोर्च में आगे रख सकते हो, और अलग अलग टाइप के हमारे पास श्रब्स है, ट्रीज है, फल के भी ट्रीज है हमारे पास।
1: अच्छा, जिसने फल का ट्री लगाना वो भी लगा सकता है?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: कौन कौन से फल का ट्री है आपके पास?
0: हमारे पास चेरीज है, एप्पल्स है, पेयर है, नेक्टरीन है, और जो चेरीज के भी टाइप्स है हमारे पास, अलग अलग टाइप के चेरीज के प्लांट्स आए हुए हैं।
1: ठीक है, 6472225601 ग्रीन वैली गार्डन सेंटर गूगल ते पालना, ग्रीन वैली गार्डन सेंटर, ग्रीन वैली ग्रोसरी स्टोर दे बार, मकवीन एंड मेफील्ड वाले इंटरसेक्शन वाले प्लाजे दे विच, प्लाजे दे विच ने उत्थे ग्रोसरी स्टोर दी पार्किंग दे विच उत्थे ग्रीन हाउस बनाया। दूसरा 1.5 एकड़ दा ग्रीन हाउस है, वो है 2547 एम्बल्टन, EMBLETON रोड, ब्रैम्पटन, हैरिटेज एंड एम्बल्टन दा इंटरसेक्शन, जिथे तुम एमेजॉन की बिल्डिंग है कोल ग्रीन हाउस है, 6472226501। थैंक यू सो मच ज्योति।
0: थैंक यू।
1: इस वीकेंड से पूरा गा पौना पूरा। संतोष जी आगे, संतोष जी कैसे हैं? दरवाजा खुला, निकल आइए जी, आ जाइए, अंदर आ जाइए। हाँ जी, सत श्रीकाल संतोष जी। संतोष, मैं कहूंगा सारा जो अपना बिजनेस धक् पानी है, तुम धक्का लाना ऑडियो वीडियो एड्स वास्ते सानू कॉल करो, जिहड़े जिहड़े कंपनीज़ नू असी लेके आउने आ ते सारयां नू कॉल करके पुछो जी कोई फायदा है, एक अद्धे नू छड्ड के तुहानू बाकी अपने आप कह देणगे। 9, 8, 10 साल तो भी कई लोग मेरे ऐड करते हैं, ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस नू मेरे नाल 10 साल हो गए ने, कई होर रुपिंदर राय नू 7-8 साल हो गए ने मेरे नाल, कई होर नाम AAA लैंडस्केपिंग वालों नू मेरे नाल 9 साल हो गए ने। हाँ जी, कई होर मतलब भी मैं बोली जाऊंगा, स्पीडएक्स खुलवाई हो असी सी पहले दिन तो साढ़े ऐड चलती है इन्हों की, साढ़े नाल पंजाब टैक्स सोल्यूशन नू 4 साल हो गए ने, साढ़े नाल ईजी वीज़ा वाले नू 2-3 साल हो गए ने, ABS ऑटोक्लेजर नू 2-2.5 साल हो गए ने, साढ़े नाल मिल्टन फोर्ड नू 1.5-2 साल हो गए ने, डेंटिस्ट्री लैम्बरल नू सानू 1 साल प्लस हो गया, राइट विंडो वाले नू साढ़ा 3rd सीजन है, 3rा साल हो जाना। ठीक है, होर इस अलावा मैं मनमोहन सिंह भी 1.5-1.5 साल हो गए, इन्हें भी काम साढ़े तो शुरू किया, हाईलैंड ऑटो रिपेयर सेंटर साढ़े नाल कई साल हो गए, तवा किचन 3 साल हो गए साढ़े नाल, मतलब इदा लोग ऐड कर रहे हैं। तुम अपना बिजनेस प्रमोट नहीं करना, तुम अपने बिजनेस में ब्रांड भी बनाना, तो अपने बिजनेस से कस्टमर भी लेके आना। सानू कॉल करनी है 416-518-3200, 416-518-3200। संतोष जी आज का सवाल लेके आए हैं, उससे पहले मैं ठोक दूंगा अपना सवाल, ठोको ताड़ी संतोष, मेरा क्वेश्चन है नहीं, मैं तुहाडा क्वेश्चन करना पहला, चलो
0: ठीक है जी।
1: हाँ करो, मैं भी सच्ची क्वेश्चन इदा दा ही लभिया सीगा, मैं कह लभदा सी, मैं ते संतोष ने अज गल कीती पहला, संतोष कहिंदी मेरे को बहुत वधिया क्वेश्चन है। संतोष काम करदे आ हरदीप पंधेर ब्रोकर ऑफ रैकेट ने उन्हां दी टीम च एज ए रियल्टर नाल काम करते हैं, सो तुसी कोई भी रियल स्टेट ट्रांजैक्शन है 416-473-4242 ईमानदारी नाल असीं तुहाडे नाल वादा करते हैं, पूरी ईमानदारी नाल वफादारी नाल तुहाडे नाल काम करांगे, ते तुहानू कोई झूठ झलाट नहीं बोलिया जो बंदा मेरी जेब च पाया होया वह मार्केट नूं जानदा ही नहीं, वह बेवकूफ है एक नंबर का, उहनूं मैं तेरे घर ते लिया दिंदा। इंडिया स्टाइल जिहड़ी रियल स्टेट है वह तो बचो, लंबे कोटां तो बचो, चमकवीआं जुत्तियां तो बचो, वड्डियां कारां काले शीशियां तो बचो, साफ सुथरा काम करो 416-473-4242 इतने तुम वे वे जे सवेरे उठ के लोगों 73-4242 इतने तुम वे वे जे सवेरे उठ के लोगों कहें लाओ थोड़ा अमीर बनाइए दसीए कैमरे मूँह ला के बहेंदे तुम देखिए सब का की कुछ निकल के आया सामने, जिदा का आप बीजते हैं सारे उदा का आप जाने। सो तुम जिंदगी बहुत छोटी है, असी अपने घर के छोटा जहा फुल है जोड़ा खिड़ के उस बाद चलिया गया, असी देखिया, मैं यही कहूँगा देखो असी ना संत नहीं है, मैं 10 बंद मैं लाइन खोल देना बाड़ा चंगा बोलने वाले हमने आ जाएंगे, इतने इन्हें सानू ए करता, इन्हें सानू वह करता, इन्हें जो ब्लेमरस होंगे ने ना वो नैगेटिविटी भरे होंगे ने, ब्लेमरस कौन ने, मैंटल इशू होंगे उन्होंने, सैको मैंटल इशू, उस चीज 2500 चीज़ा साढ़ा रोज़ माड़िया होंगे, 2500 चीज़ा रोज़ माड़िया होंगे, उन्होंने लैके नहीं बैठ जाइए, दफा करो। मैं इदा इदा दू चीज़ा दिखा दूँ, हमने दोटो दिखा देना, एक प्रॉपर्टी है साड़ी वो पट के गए ने सारा कुछ पट के 30-40 हज़ार का नुकसान है, एक प्रॉपर्टी है उन्होंने खोल के वे पानी चलाता, फ्रीजिंग के पटाके पै गए सारे पाइपा फिर भी कुछ नहीं किया, सानू हुंदा इह इन्ने क जोगा जिन्हें किया, असी कहनू इहदे लैवल ते जाना, लैट्स मूव ऑन। नजायज़ किसी ना अज तक कोई गल नहीं है जी होगी, पर जेडे हटते ही नहीं उन्हां दी मर्जी। संतोष चलिए आप अपने क्वेश्चन दे वल।
0: जी बिल्कुल अमन जी, अजकल सारे डाइट कॉन्शियस हो गए, सो मेरा एक क्वेश्चन सीगा सारा
1: नू। ओके संतोष जी,
0: मेरा क्वेश्चन है कि तुसी ब्रेकफास्ट दे विच केड़ी चीज ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
1: ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ?
0: ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕੀ ਆ।
1: ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
0: ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਅਮਨ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
1: ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
0: ਜੀ।
1: ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ
0: ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ।
1: ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹੁਣ।
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
1: ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਅੱਧਾ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
0: ਜੀ,
1: 10 ਮੁਰਗੀਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣਗੀਆਂ?
0: ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਅੱਧਾ ਅੰਡਾ।
1: ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ। 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337

0: 8877sofastudio.ca. Thank you, ji.
1: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6477702 V23।
2: लाइसेंस नंबर 10394।
3: जी तुसी जुड़े जी गुंतास रेडियो दे नाल, ते मेरा नंबर भी तुसी नोट कर लो। कोई भी थानू जानकारी चाहिदी है इंश्योरेंस दी, तुसी लाइफ डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस दा जिहड़ा कॉम्बो प्लान लेना चाहुंदे हो, जिहदे च डिसेबिलिटी भी नाल ऐड करा सकदे हो, ते $99 च तुसी इह प्लान आ जिहड़ा डिजाइन करवा सकदे हो। ते नाल दी नाल तुहाडे विजिटर सुपर वीजा ते कोई प्यारे आ रहे आ जी इत्थे, ते उहनां दे लई बड़े वधिया प्लान हैगे आ। सो जरूर तुसी चाहे डिडक्टिबल पाउणा है जां तुसी विद प्री एग्जिस्टिंग कोई मेडिकल इशू है उन्होंने उदे समेत तुसी पॉलिसी लेनी है, जां कोई उन्होंने इशू नहीं हैगा, कहने का मतलब यह है कि जरूर उन्होंने डिस्कलोज करया करो, दस्या करो। बहुत ही बार आप देखते हैं कि कह दें नहीं नहीं, पहले कई बार ना हसी भी आती है, कह देंगे पूछते हैं भी हाँ जी कोई मेडिकल इशू हैगा, कोई दवाई वगैरह खाते हैं, कहते हाँ बीपी दी कदे कदाए ले लेंगे है ना, पर उंज कोई इशू नहीं हैगा। एक दिन बड़ा वधिया नाले तो कई जन कोई इशू नहीं हैगा, नाले फिर दो तीन बीमारियां उन्होंने गिना दित्तियां। सो इट मीनस कोई चाहे वह ईवन बीपी की ही गोली लेंदे आ, डॉक्टर ने उन्होंने प्रेसक्राइब करता ना जदों, तो तुसी दसना हुंदा, ये नहीं हुंदा भी कदी लै ली कदी नहीं, फिर तो होर डेंजरस काम हो जाता कि तुसी दवाई जिहड़ी तुहानू डॉक्टर कह रहा जिन्हों भी, तो तुसी प्रॉपर उन्होंने खा नहीं रहे, तो फिर इशू तो ज़्यादा गहरा सकता है ना। सो इस करके थोड़े जे पैसे बचाने पिछे ये ना हो कि बाद चो क्लेम ना मिले, प्रॉब्लम आवे कोई। सो जरूर इन्हां गल्लां दा रखो जी ध्यान, ते बाकी तुसी अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करा के सेविंग करनी है या बच्चों का एजुकेशन प्लान लेना, मेरा नंबर तुसी नोट कर लो जी 6477652340 6477652340 ते मेरे नाल तुसी 11 बजे तो बाद गलबात कर सकते हो। ते लो जी अज जिहड़ा एक दिन होर बड़ा स्पैशल है, जिवें जफर भाजी दस के गए है बड़ा वधिया अपना के ईद का त्यौहार ये क्यों मनाया जाता है ना, भी उहदे विच उह कहिंदे आ भी हाँ जी जिहड़ियां विमेन हैगियां उन्हां दा भी बड़ा ध्यान रखा जाता, उन्हां नूं पूरा आदर सन्मान मिले। बिल्कुल, ये तो श्री गुरु नानक देव जी पातशाह तो या होर किन्ने भी साधु संत हुए है जी पुराने समय दे विच, उन्होंने सब ने वैसे कहा जिहड़ी औरत है ना उन्होंने बहुत उहदी इज्जत होनी चाहीदी है, सत्कार मिलना चाहीदा। गुरु नानक पातशाह ने तो सो क्यों मंदा आखीए जित जमे राजान है ना, उन्होंने कहा। और नाल दी नाल जिहड़ा हैगा जिवें सती प्रथा ये सब ते रोक लाउण दी उन्होंने गलबात की सी कि जिहड़ियां समाजिक कुरीतियां है ना ये बंद होनियां चाहीदियां। तो पहला की हुंदा सीगा भी हाँ जी बहुत ज़्यादा मलजूमां नूं दबाया जांदा सीगा, धर्म के आधार पर बड़ा भेदभाव किया जाता सीगा है ना। तो फिर जिहड़े छेवें पातशाह सी, क्योंकि पहला पहला तो चलो जिन्हें भी साढ़े गुरु होए आ कोई उन्हां कोल शस्त्र नहीं सी हुंदा, पर जो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा जिहड़ा मुगल समराज है वह अत्याचार कर रहा दूजे लोगों के उपर, तो उन्होंने फिर शस्त्र धारण की जिहड़ी गल कही छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने। तो अज जिहड़ा है बड़ा पवित्र दिन है, अज एक तो चलो आप ईद की गल कर रहे हैं, नाल दी नाल अज 29 मई 1606 दे विच 1606 शस्त्र धारण दिवस है जिहड़ा वह मनाया गया सी, और श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने शस्त्र धारण सैरामनी जिहड़ी है वह की सीगी, और एक रीति चलाई सीगी कि मीरी पीरी की जिहड़ी तलवार है उन्होंने धारण की सी, एक मीरी की एक पीरी की, कि जे किसी ते मलजूम ते किसी ते जुलम हो रहा वह चीज़ नूं खत्म करना भी जरूरी है। सो जिवें आप कई बार शस्त्रां की गल करते हुंदे कई कहिंदे नहीं ये नहीं ठीक वह नहीं ठीक, पर रक्षा दे लई जिथे किसी नाल जुलम हुंदा होवे वह चीज़ नूं खत्म करन लई जिहड़े शस्त्र है वह बहुत जरूरी है। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੋ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਉਹ 54 ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਘਿਨੌਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬਈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਹੈ, 29 ਮਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਈਵਨ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਕਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਉਂਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਝੂਠ ਟਿਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੈਪਰ ਹੈ, ਸਿੰਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੋ ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਚਕਾਨਾ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ 29 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਬੀਫ ਵਾਲਾ ਸੌਂਗ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਛਾ 295 ਵਾਲਾ ਸੌਂਗ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਲਿਖੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਹ ਸੁਣਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ।

सही है। वैसे गल्ला उच्ची सी ओदियां, कोई कोई समझदा सी, नहीं सारे नहीं सी समझ पाउंदे, है ना। सो देख लो, मरण तो बाद वैसे ही जे कहंदे किसे दे टूर लगने, वर्ल्ड टूर लगने आ ओदे, होलोग्राम शो जड़े होने सिद्धू मूसे वाले दे। सो कमाल ही है वैसे जिहड़ी टेक्नोलॉजी है ओह भी। सो बाकी देखदे आ जी आउण वाले समें दे विच किवें सारा कुछ जिहड़ा चलदा है। सो जिहड़े वर्ल्ड वाइड जिहड़े आ शो ओदे होण जा रहे। अच्छा, 295 भी ओहदा गीत बड़ा ही कमाल दा सीगा।

0: आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: आप पंजाबी आ रहे।

0: ਰੇਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਕੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕਾ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕੋ ਕਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਯੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਆਪਕਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਐਸੀ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਿਆ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਥ ਸੀਧੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ?
1: ਹਾਂ ਨਮਸਤੇ ਨਮਸਤੇ ਭਈਆ, ਗੁਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਕੈਸਾ ਹੈ ਆਪ?
0: ਆਪ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਤੇ ਹੋ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਤੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਤੇ ਹੋ ਆਪ? ਮੈਂ
1: ਸਹੀ ਬਤਾ, ਅਭੀ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਭੀ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲੋਗ ਬੈਠ ਕੇ ਆਤਾ।
0: ਔਰ ਆਪ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜੋ ਆਪ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭੀ ਕਾ, ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਮੈਂ ਦੋ ਬਾਤੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਆਪਕਾ ਨੰਬਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਮੇ ਬਸ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਨੰਬਰ ਦੋ, 4374383399 ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, 4374383399 ਜੀ ਆਪ ਬਤਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ।
1: यस यस जब भैया क्या भैया, हमारा शहर का हेल्थ इज वेल्थ बोल रहा है लोगों, हमारा हेल्थ अच्छा हो तो वेल्थ भी अच्छा होता है। क्या हेल्थ में क्या होता है, हमारा इधर का देश में, देश छोड़ के ये देश में आ गया, ये देश में हमारा खाना अच्छे से नहीं खाता है और वो फ्रोजन खाना खाता है, फ्रोजन खाना खाता है और अच्छे से टाइम टू टाइम खाना नहीं खाता है और इसलिए जंक फूड खाता है, इसलिए हमारा बॉडी में बहुत वीकनेस हो जाता है। ये वीकनेस कारण से बॉडी को टॉक्सिन्स ज्यादा होता है और वो यूरिक एसिड ज्यादा होकर लोगों को ज्यादा जॉइंट में दर्द आता है, घुटनों में दर्द आता है, लोअर बैक पेन हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, एस्ट्रो आर्थराइटिस हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, नेक में भी, हमारा नेक होता है भैया, नेक में भी C7, C5, C6 में भी प्रॉब्लम होके नमनेस होता है, सुन हो जाता है, सयाटिका हो जाता है, वैसा लोग बहुत लोग इधर मेरे पास आ रहा है, उसको सारा लोग उनको ऊपर वाला का आशीर्वाद से ठीक हो रहा है और ब्लड ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, हमारा खाना अच्छा नहीं होता है इसी वजह से, इसलिए क्या होता है, हाथ में ब्लॉकेज भी होता है, सारा ब्रेन में भी हो जाता है, इस कारण से भी मेरे पास बहुत लोग,
0: जैसे गुरु जी आप कह रहे हो कोलेस्ट्रॉल, कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है, उसके लिए आप कितने दिन में कोलेस्ट्रॉल उनका ठीक कर देंगे?
1: ब्रदर आप 1 मंथ हमारा हर्बल्स ले लो, उसके बाद चेक करो, आपको नॉर्मल में हो जाता है, रेगुलर।
0: अच्छा, कोई वो दूसरी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है?
1: 100% नहीं है,
0: 100% नहीं। अच्छा, दो एक महीने में कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा?
1: हाँ, एक महीने में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, आप देख सकते हैं, बहुत लोग इसका मेरे को दिखाया जाता है ब्लड टेस्ट।
0: अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है जो आप हमें देसी चीजें देते हैं?
1: भैया हमारा सारा देसी है, हर्बल से और सच्ची जड़ी बूटिया से हम बना जाता है, हम बनता है जड़ी बूटिया सारा हिमालय से आता है। अच्छा। हिमालय से जाके, हिमालय से मेरा वो टीम से का पास जाके लेकर आता है उधर से, इसके लिए हमारा दवा में कोई भी हमारा हर्बल्स में साइड इफेक्ट नहीं होता है, बट साइड बेनिफिट्स ज्यादा आता है, वैसा होता है। क्योंकि
0: आपको कितना टाइम हो गया आपको ये सब कुछ करते हुए?
1: यस, वो ये मैं बोल रहा है, आज कल से ये काम नहीं कर रहा है, मैं 9 जनरेशन से ये काम कर रहा है, मेरा पापा, मेरा दादा, मेरा परदादा, वैसा 9 जनरेशन से ये काम कर रहा है। हम हेयरबल से देखो भैया, आपको भी मालूम है, एक 80-70 साल के पहले इंडिया में डॉक्टर बहुत कम था, MBBS डॉक्टर बहुत कम था, उस टाइम लोगों को प्रॉब्लम होने के टाइम में वो जाता है हकीम्स को पास जाता है, ये अकीम नाड़ी देखता है, नाड़ी परिशोधन, नाड़ी का मतलब पल्स देखता है, नस देखता है, नस देख के शरीर में क्या प्रॉब्लम है बता करके उसको हेयरबल से ट्रीट करता है, इससे ये प्रॉब्लम जड़ से निकल जाता है।
0: अच्छा, आप नाड़ी को ही बस पकड़ के बता देते हो ये प्रॉब्लम है?
1: मैं भी सेम ही देखता है, पल्स पकड़ता है, पल्स देखने के बाद उसको शरीर में वाता पित्त कफा, ये 3 दोष में क्या दोष बैठता है, क्या दोष से क्या प्रॉब्लम आता है हमको पता चलता है, उसको बाद उसको क्या जड़ी बूटियां देना मैं देता हूँ, मैं दे रहा है।
0: आपने ना आज फ्राइडे के दिन मेरे से इंटरव्यू की है, आपके उधर जैसे कोई सिंगर आता है ना, मेला लग जाता है, आप देखना कल और परसों आपका पूरा मेला लग जाएगा उधर, मैं आपको बता रहा हूँ।
1: थैंक यू थैंक यू भैया।
0: अच्छा आपने आपने कोलेस्ट्रॉल का बता दिया मेरे को, ठीक है। बहुत फैमिली का इधर हमारे जो शुगर का लेवल बड़ा हाई है, वो लोग कोई इंजेक्शन लगाते हैं शुगर का, उसका भी कुछ है आपके पास?
1: हाँ भैया बिल्कुल, मेरा मेरा क्या होता है इंजेक्शन को 1 वीक 10 दिन में इंजेक्शन पूरा छोड़ने के लिए हमारे पास हर्बल्स आए। बहुत लोग हमारे पास दवा वो हर्बल्स लेके इंजेक्शन में छोड़ गया।
0: अच्छा छोड़ दिया इंजेक्शन?
1: हाँ इंजेक्शन 1 वीक में 1 वीक 10 दिन में इंजेक्शन को बिल्कुल बंद करके हमारा हर्बल से वो नॉर्मल में आता है, 6.5 के अंदर आ जाता है।
0: ठीक है।
1: क्योंकि ये भैया पहले हमको शुगर किसके लिए आता है हम बताता है, हमारा पैंक्रियास अच्छे से काम नहीं करता है, फिल्ट्रेशन नहीं करता है, इसलिए डायरेक्टली हमारा खाना खाते डायरेक्टली हम जाता है ब्लड को अंदर ग्लूकोज जाता है। वो पैंक्रियास क्या कम करता है उसको ब्लड को शुगर कंट्रोल करके कितना चाहिए उतना हमको ब्लड को अंदर जाने को देता है पैंक्रियास। ये पैंक्रियास काम नहीं करता है तब शुगर बढ़ जाता है। हमारा जड़ी बूटियां क्या करता है ये पैंक्रियास को कंट्रोल करके उसको फिल्ट्रेशन करने के लिए हेल्प करता है, इसलिए शुगर को इंजेक्शन में डालने को और टैबलेट डालने को लिए जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पैंक्रियास से रिकनेक्ट आने का चांस हो जाता है।
0: ये तो आपका बहुत नॉलेज है आपको।
1: या वैसा सेम है जॉइंट पेन होता है, जॉइंट को अंदर वो कैटलेज कम हो जाता है और जॉइंट को अंदर लिगमेंट कम हो जाता है, इसलिए बोन वो क्रैक्स होता है, साउंड हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है एंड डिस्क में प्रॉब्लम आता है L3, L4, L5 में, उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। स्किन के हम चैलेंज करते हैं भगवान आशीर्वाद से, स्किन के 4-5 दिन में उसको डिफरेंट दिखेगा स्किन में।
0: अच्छा
1: एक्जिमा बहुत लोगों आता है, बहुत लोगों को फर्क होता है एक्जिमा के लिए, सोरियासिस के लिए,
0: जैसे किसी को गाउट हो जाता है, गाउट का भी आपके पास?
1: गाउट का मतलब कहता है आर्थराइटिस बढ़ जाता है इसलिए गाउट आ जाता है। आर्थराइटिस में 4 स्टेज होता है भाई, एक जॉइंट पेन, एक वो रोमांटिक आर्थराइटिस, थर्ड ऑस्ट्रो आर्थराइटिस, फोर्थ गाउट आर्थराइटिस। गाउट क्या होता है टर्न हो जाता है हमारे फिंगर्स, लेग को फिंगर्स हैंड को फिंगर्स टर्न होके बहुत दर्द हो जाता है उसको गाउट बोलता है, उसको भी हमारे पास इलाज रहता है।
0: जो ये तो सारे इलाज आप अपने कर दे। आज फ्राइडे है और शाम को आप आज मिल सकते हो?
1: आज मैं 4 दिन ब्राह्मण में रहता हूं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे।
0: मेरे को पता चल गया आपके फोन जो अभी रिंग होने स्टार्ट हो गए हैं 4374383399। अभी आप लाइन में आपकी फिर करेंगे नेक्स्ट टाइम बात, और अपने फोन आंसर करो अभी आप, ठीक है सर?
1: ओके
0: भाई थैंक यू वेरी मच। नंबर नोट कर लो, वाकई यार ये मैं बड़े बंदे को सुनिया इन्होंने बारे, जेड़ा बंदा भी जानता वो ठीक हो गया आ रहा है। मैं बहुत इन्होंने बारे पड़ताल जिमें कहते ना बंदा पुछता किसी को सजे खबियो पता भी किया, तो वाकई ये रिजल्ट बहुत आ रहे हैं। 4374383399 437-438-3399 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕਰ ਲੋ। ਵਿਧੀ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜੀ?
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
0: ਜੀ ਜੀ।
2: ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦੇ 70 ਜਾਂ 70 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ
0: ਜੀ ਜੀ।
2: ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਲਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇੰਜ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 70 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ $3500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $4500 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਏਜ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ $85 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 65, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੋਰ 70 ਪਲੱਸ। that is only for parents jinna di umar 55 to leke 64 tak hai is to jehdi umar zyada hundi hai tade parents di age zyada hai te inne tonu inne vich koi premium nahi milna premium nu na hamesha dhyan ch rakhya karo oh policy de andar ki cover hunda hai oh bahut zyada zaruri hai zarur dhyan rakhya karo is cheez da main example deke bada chhiti das dinni ha 70 saal de parent unhane hune hi 5 din pehla hi aaye sige aande hi oh dik ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜੁਅਲੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਾਲੋ ਅਪ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ
2: ਕੁਝ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ $1,00,000 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ $1,00,000 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਮਾਊਂਟ ਲਈ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਅਗਰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਗਜ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ $5,000 ਦਾ ਤੇ $5,000 ਲਈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਅਗਰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋਗੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਘੱਟ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਟ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-524-3535 416-524-3535 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ
0: ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ

0: से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग
1: 0609-416-677-0609
2: इंडियन फ्रूटलैंड वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स।
3: ले इको जगह तो कितने सारा कुछ मिलता है। दो चीजा लई एक जगह रुको फिर अगलिया दो दी दूजी जगह रुको।
2: इंडियन फ्रूट लैंड है सच्ची वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स। सब तो वधिया ग्रोसरी सब तो वधिया प्राइसेस से आज ही पहुंचो। हुन इंडियन फ्रूट लैंड दी सतवीं लोकेशन भी खुल गई है ऑन 25 सैंडलवुड पार्कवे नियर होरांथ्रो स्ट्रीट ब्रैम्पटन।
4: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world.

गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डे टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशा वादी उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज्जा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनैशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। और प्रीत जी स्टूडियो च आ चुके ने, उन्हां नाल भी गलबात करते हैं, देखते हैं साडे भविख लई तुहाडे बच्चों की परवरिश लई भविख लई की सलाह मशवरा देंगे। छतरी छत रिपोर्ट हाजिर है। अज सूरज सिंह 5:40 ते आया, 8:49 ते चले जाना। मामा चांसल शाम नूं 7:46 ते आएगा, 4:13 ते चले जाना। अज दा तापमान 27-28 डिग्री तक जाएगा, मोस्टली सूरज चमकदा रहेगा। कल नूं सूरज चमकेगा तापमान 24 डिग्री, संडे नूं सूरज चमकेगा 23 डिग्री, मंडे नूं सूरज चमकेगा 22 डिग्री, उपरा उपर नूं जां थल्ले नूं गाउना ट्यूजडे सूरज चमकेगा 21 डिग्री, बुधवार नूं सूरज चमकेगा 22 डिग्री तापमान रहणगे। स्पोर्ट्स ब्लू जे वाले कल चौथी गेम लगातार जिते, 2-1 दे फर्क नाल ओरियल नूं हराया। ते क्रिकेट दा जिहड़ा मैच आ उहदी वी गल सुणा दईए, उहदे विच राजस्थान रॉयल वालिआं ने 214 रन बणाए ते 6 विकटां ते, गुजरातीआं ने जे खेलणा देखदे आ की बणदा। उधर कहिंदे जी मूसे वाले ने टहिणा ठोकता गाने च, कल परसों दे ने मकड़ ठोकता, हुण इक कोई की आ रवनीत बिट्टू ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਠੋਕਤਾ, ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਬਈ।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर लै गया। आटा दाल चावल दाल सब्जी ते दूध घ्यो सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड। 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 किलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜਰਾ, ਆਟੋ ਹੋਮ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ। ਫੋਰ ਆਟੋ ਹੋਮ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 15 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6472411300967420413 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ TFSA, RRSP ਜਾਂ RESP ਜਾਂ ਸਿਪ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਆ ਆਪਣੀ ਰਿਟੇਨ ਅਰਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਰਾਈਟਲੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6472411309 6472411309।
5: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection Upper. To see cheap flight tickets, si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sunu chahide ne. Jan tusi visa services di pal de vecho, puri family vacation Upper jaan di sochre ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna waji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
6: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 4165700157
7: 4165700157 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਤਨੋ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਖੀ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।

0: बिल्कुल जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हाँ स्पेशली जरा जी सुदेश कुमारी जी, क्योंकि इन्ना प्यारा जरा जी ये लाइव से भी गाँव है और फुल ऑन जरा जी इंटरटेन करते हैं। सो इदा का कुछ माहौल मैनु दिख रहा है कि किदा का जरा जी सोहना सोहना जरा जी फुल ऑन मस्ती वाला माहौल तुम 21 जून पीएसएन कन्वेंशन सेंटर देखने को मिलेगा। देखो जी, तिया जो सुखी नजर वाली तिया का जो नाम आ जाता है ना, तो फिर मेनु लगता है कि कोई डाउट नहीं रह जाता, पता है कि ठीक है सिंगर बेस्ट तो बेस्ट ही आने। सो हम मैनू भी बड़ा टाइम जरा जी हो गया इस टीम के, सो मैनू ऑलवेज बड़ी जी जी एक्साइटमेंट रही है। थोड़ा जी लेट जरूर हो गए, बट लेट हाँ पर कोई गल नहीं, ऑलवेज विल ब्रिंग द बेस्ट। सो बिल्कुल जी 9057990999 ते गलबात करके तुसी जेड़ा जी टिकट्स दा लिंक साडे तो ले सकदे आ। और नाल दी नाल जिथे की फ्राइडे हैगा असी मुकेश चौहान जी दे नाल भी थोड़ी जी तुहाडी गलबात करावांगे। मैं थोड़ा जिहा उहनां दे बारे जरूर दसदा। मुकेश चौहान फ्रॉम मोरगेज डिलीजेंट, ये तुहाडा साथ किदां दे सकदे जे तुसी रीफाइनेंस करवाउणा आ, या तुसी जेड़ा जी मंथली मोरगेज पेमेंट मिस कर दित्ती हैगी आ, या तुहाडे कोल कम नहीं सीगे तां तुहानूं जेड़ा जी क्रेडिट कार्ड डेब्ट इस टाइम तुहाडे सिर ते ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 55+ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਮ ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
1: हेलो जी, सत श्री अकाल किरण जी, की हाल है जी तुम्हारा?
0: हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं?
1: जबरदस्त जबरदस्त, हैप्पी फ्राइडे।
0: बिल्कुल जी, हैप्पी फ्राइडे। एंड एक मैं लिसनर्स नु दस दवा जी कि कॉल्स आ रही है क्या, प्लीज थोड़ा जो समय दिता जाए क्योंकि लाइन इस टाइम बिजी है, तो मैं लाइन नहीं जड़ी जी पिक कर सकती, या तो तुसी जड़ी जी होल्ड कर लो। सो बिल्कुल मुकेश जी, सॉरी टू बिकॉज कॉल्स आर सो मेनी कॉल्स आर कमिंग।
1: दैट्स ओके, बिल्कुल
0: या या। सो बिल्कुल जी मुकेश जी, सो जहां पे मैंने बताया कि ठीक है मोर्गेज की अगर किसी को हेल्प चाहिए, इवन यूर फर्स्ट टाइम होम बायर, या आप स्पेशली प्रॉब्लम क्या आती है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, है ना। हम लोग ऑलवेज बात करते हैं कि ठीक है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी स्पेशली मोर्गेज में बहुत सारी चीजें होती है जो उन्हें ध्यान रखनी होती है। सो हाउ यू कैन हेल्प देम, पहले तो ये सवाल बताओ।
1: अच्छा चलें, पहले तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में भी बात करते हैं और हम सब ये भी बता देते हैं। मुझे पता है कि हमारे लिस्टनर ज्यादातर ट्रक ड्राइवर हैं और इमिग्रेशन कंपनी से और ज्यादा अपना ही कारोबार करते हैं, तो आपने मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड आपने ये क्वेश्चन किया सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, तो मैं थोड़ी सी ब्रिज फाइनेंसिंग के बारे में बताता हूँ, फिर साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड से रिलेटेड भी करता हूँ कि कैसे उनको हेल्प करेंगी हमारी सर्विसेज, राइट। तो मैं मिसिसागा में होता हूँ, राइट, मिसिसागा रोड और जो है डेरी थे। देखिए ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होती है, ब्रिज फाइनेंसिंग में ये होता है, अभी देखिए बाय एंड सेल की ट्रांजैक्शन मार्केट में बढ़ रही है, राइट, परचेज ज्यादा हो रही, सेल ओके कम हो रही, बट हो रही है, राइट, ऐसा नहीं बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो रही। अगर कोई होम ओनर पहले घर खरीदता है और बाद में बेचता है, मतलब पैसे बेच के ही तो आने वाले हैं ना किरण जी, राइट भाई, बेच में बात करेगा वो एक महीने के बाद भी बिक सकता है, दो महीने के बाद भी, तीन महीने के बाद भी, चार महीने के बाद तक, फोर मंथ्स तक का टाइम मिलेगा आपको अगर वो करता है। इस दौरान में जो फाइनेंसिंग बैंक देगा उसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग।
0: अच्छा जी।
1: मतलब एग्जांपल है, अपना घर से आपको 5 लाख की इक्विटी मिल रही है, मगर और घर आपको विद आप घर बेचोगे 4 महीने के बाद, एग्जांपल है आप बेचोगे सितंबर में, मगर घर खरीदना अभी आपको, तो उस अभी से लेकर जून 1st से लेकर सितंबर 1st तक के दरमियान को आपको लोन मिलेगा जिसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। घर खरीद लें, घर मूव हो जाए, शिफ्ट हो जाए, बच्चों की स्कूलिंग शुरू होने वाली है, कमिटमेंट है, पता है क्योंकि आपको राइट फ्रॉम सितंबर से तो स्कूलिंग चालू हो जाएगी वापस, राइट, मार्च ब्रेक के बाद, अपना समर ब्रेक के बाद। तो इसमें दो ही कंडीशन है, एक तो पहली कंडीशन आपकी ये है कि दोनों के सेल एंड परचेज अग्रीमेंट फॉर्म होने चाहिए, आपका जो खरीद रहे हैं वो भी और जो बेच रहे हैं वो भी, ऐसा नहीं कि आपने घर खरीद लिया और बेचने की आपने मतलब कोई आपकी कोई कमिटमेंट ही नहीं है आपके पास, रियल है ना। दूसरी बात, दूसरी चीजें होनी चाहिए कि आपकी पूरी प्रोफाइल 100

0: 0864 Dhaba on the Falls.
1: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nandaji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nandaji 647
0: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है, ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888। दैट्स 905-460-8888।
3: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।

0: 32, 55, 80, 98
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
2: काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते
2: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: चक्कर लगा हो।
1: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
0: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुणे कॉल करो 905-564-6444
1: 905-564-6444।
0: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो। चलो AM 530 तो तानू माण है कनेडियन होण दा। जे कनेडियन होण दे नाते सोफा मार्ट ते कैसा लेदर जड़े के इको ओनर ने और कस्टम मेड सोफे तैयार करदे ने कनेडियन मेड। अपने घर दे लिविंग रूम की गिनती मिनती करके लेके जाओ ते हंसा सोफा तैयार करवाओ। 4 सीटा वाला 5 सीटा वाला तुहाडी अपनी मर्जी है। 11x11 10x10 दा सोफा तैयार करवा सकते हो। इन्हां दी फैक्ट्री है 120 डेल्टा पार्क। उत्थे बहुत वड्डा शोरूम है ते पहला शोरूम है 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन। नंबर है परमजीत कौर होरां दा 905-792-8053। 905-792-8053 सोफा मार्ट और कैसा लेदर इको ही कंपनी दा नाम।
2: मल्ली टेंट सर्विसेज तुहाडे स्पेशल इवेंट्स दे हरेक साइज दे वाटरप्रूफ टेंट्स प्रोवाइड करदे ने। 10x10 फीट तो लेके 40x100 फीट दे तंबू ने। टेबल्स ते कुर्सियां भी नाल लेके आउंदे ने ते तुहाडे बैकयार्ड नूं बैंकुट हॉल वांगू बणाउंदे ने। फैंसी चेयर्स भी अवेलेबल हन। LED ग्लो इन द डार्क बड़ी बनाईयां बार्स टेबल्स ते कुर्सियां भी तुसीं रेंट कर सकदे हो। अज ही मल्ली टेंट सर्विसेज नूं कॉल करो 647-999-2569 647-999-2569।
0: चलो AM 530 तो तुसीं सुन रहे हो अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो। पिछले 30 वर्षों तो तुहाडे अंग संग देश प्रदेश हुण अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वाधा कर चुका। पहला तुसीं सुनदे सी मंडे टू फ्राइडे 4 to 6 लेकिन हुण तुसीं सुनदे हो 3 to 6 शामी। जाने के देश प्रदेश तुहाडे लई शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है ते नाल तुसीं दुपहरे सवेरे 1 to 4 शाम दे 4 तक देश प्रदेश नाल सांझ पाउंदे हो। देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करनी होवे तां अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नूं 416-457-3381 416-457-3381 जां तेजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551। देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो 7 डेज अ वीक तुहाडे अंग संग। चलो AM 530
3: ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੋ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਕਰਵਾਓ। ਫਾਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਲ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਐਟ 416-725-2551।

यहां से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

0: चक्कर लगाओ।
1: हाय चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
2: है। फिर कॉकरोच ते चूहे ओ हाले महीना पहला ने ट्रीटमेंट कराई सी।
1: मैं तेरा पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपरो बेसमेंट वाले बेडबग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
2: ओ मैं ता कहना घर ही भेज दिंदे आ।
0: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नू कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नू कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी कम करदे आ। सस्ते दा दावा तां नहीं